जाए। नानक गुरमुख मिल है वड्याइया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी। हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी जो

तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ध्याए दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यो सब

मन रव रहया सच्चे रहया समाए नानक हौ बलिहारी तिन कौ जो चलन सतगुर पाए महला तीजा।

बन खंड जाए जोग तप कीनो, कंध मूल चुन खाया, नादी बेदी शब्दी मोनी, जम के पटै लिखाया।

भया भिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म।

अजहू सहिय दुलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बेकै राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कह।

सहज समाध उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय तहर जन्म मरण पह पहगी।

जानी हर हर सफलो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपयो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सबला थी फूख फुखानी।

आई फिर छुट है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जप्यो तरह तरह की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जप

सुख गर्दब पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचियावत बिखैठ गौरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी इस जुग में पवित्र पद पवित्र पुनीत जात अकार्थ जन्म पदार्थ काच बाद रह जीत जन्म जन्म।

मंगल सुख सुधारे। धनासरी महला पंजवां घर अठवां दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ सास सास संभाले ए लोक परलोक।

का जुग मह धर्मा जन कौ नाम बडाई सोभ नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाऊ।

ही अब गुण बह बहरोसी तन जोबन आक की छाया बिरद भय दिन पुन्या नानक नाम बिना दोहागण छूट।

हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस

शेष रहै। आद पूरन मध्य पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमणं नानक अगनासन जगदीश्वर है। पेखन सुनन सुनावनो मन महेंद्रिय साच पूर रहो सर्वतर मैं नानक हर रंग राच पौड़ी। हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मह थाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोकन

विखम थान हुंजिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ विसरत सुख कदे नाहे जस है जन्म हार। श्लोक।

गए। सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग, हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहे विजोग। साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग। श्लोक कुटुंब जतन करण माया अनेक उदमहि।

रहाओ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर्ण काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा

तिन प्रभ आप बुलायो रहाउ। हर कथा हर जस साध संगत स्यों, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसुंभ को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल स्यों पाओ ना कीनो, नह सतपुरख मनायो। तावत कौ ताव है बहु भांति, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान इशनान ना

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो,

हम हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे रहा। जो

इसका इस हर धन का शाह हर आप है संत हो। इस हर धन का शाह हर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाई।

शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मनमुख

निर्मला क्यों कर मिलया जाए, प्रभ मेले ता मिल रहे हों मैं शब्द जलाए। सो शहो सच्चा विसरै त्रिग जीवन संसार, नदर करे ना विसरै गुरमति विचार, सदगुरु मेले ता

सिमर सिमर गुरे अपना सोया मन जा गाई एक दान मंगाए नानक बेचारा हर दासन दास कराई।

आनंदिनो शब्द रवहो अनहद शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए, हर गुण गाव हो नारी, आनंदिन भगत करहे गुर आगे, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वस्या कट अंतर, सेजन शब्द सुहाए, नानक तिन

साज शब्द लिवलाई आन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर न जाने दूजा सब।

गाओ मंगलो नित हर जन हो पुन्नी इच सबाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती मरै न आवै जाई राम।

तह जन्म न मरना, तह जन्म न मरना आवन जाना, बहुण न पाईए जुनिए, नानक गुर परमेश्वर पाया, जिस प्रसाद इच पुनिए।

पौड़ी। सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी, होमै मार मन निर्मला हर नाम उरतारी। कोठे मंडप माड़िया लग पए गवारी, जिनकी

गुर वचनी मन सहज ध्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख भरम भुले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने।

मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिन की गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारे जिसनों

मन अभिमान कहत सुनत सबे सुख पावहि मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

हम पाथरहीन अकर्मा मेरे मन भज राम नाम रामा गुरमत हर रस पाइय गुरमत हर रस पाइय होर त्याग हो निफल काम रहाओ हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा।

आप ही घट घट आप अलिपना आपे अवगत आप संगरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवां।

सफल सो आया, बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया।

अवर काश सब प्रभ कै हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवां।

रहाउ। सोवत हर जप जाग गया देखिया बिस्माद पी अमृत तृप्ता सया ताका अचरज स्वाद। आप मुक्त संगी तरे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पही दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवां।

रहाओ। करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा।

दृष्ट दृष्टाए अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश कुशैया शरण परे से जन उबरे ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम चंदन।

रख रख चरण हर ताल पुरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावे, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चुवै अत निर्मल।

पाए। गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्लै पाए पौड़ी।

अघ निमख जस गाओ। बाल सखाई भगतन को मीत, प्राण आधार नानक हित चीत। गोंड महला पंजवां।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीद नाम संग मनुआ गीद नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

जोगी जुगत सहज कर वासै एक दृष्ट एको कर देखिया भीखिया पाए शब्द तृप्ता सह रहा।

तह हर हर हर रस भोगनी रहाव। सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचय जत कत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी। सदगुर जोग का

सोग हरख मह दे बिरधानी साखत एवही करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माहे इहो निधाना साधु पाहे नानक गुर गोविंद जिस तूठा घट घट रमैया तिन्ही डीठा राम कली महला पंजवां पंच शब्द

फलत फलत होहे दोहें सुहेले, अचर्ज पुरख त्याओ रहाव, उठत बैठत हर जाप, बिनसै सगल संताप, बैरी सब होवह मीत, निर्मल तेरा होवै चीत, सब ते उत्तम इहो करम, सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हर

निंदा कर कर बहुत विगूता गर्भ जोन मह किरत पया पूर्व कमाणे छोडह नाही जम दूत ग्रास्यो महा पया बोलै झूठ कमावै अवरा तृष्ण ना बूझै बहुत हया असाध रोग उपजया संत दूखन दे विनाशी महा खया।

नरक गया, खिन मह वेश करहे नटुआ ज्यों, मोह पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया, करहे बिकार विथार कन्हेरे, सुरत शब्द बिन भरम पया। हौ मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वह रोग गया। सुख संपत कौ आवत देखें, साकत मानं अभिमान पहया।

जे कुटंब छोड़ पर पवन करहें, ग्रह शरीर में हर हर नाम, गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है।

मैल गवाई। त्रैगुण अचेत नाम चेत है नाही, बिन नाम है बिन सजाई। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूरत, त्रैगुण परम फुलाई।

राम रमा कंठ उर धारी है, उर धार हर हर पुरख पूरन, पार ब्रह्म निरंजनो, भय दूर करता पाप हरता, दुसह दुख भव खंडनो।

नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास ध्याएणा।

तुझे पछानई मोहे निर्गुण अनाथ शरणी आया। बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया गुर नाम दिया कुशल थिया।

शांत प्रभ विपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै गुर चरण लागे दिन सभागे।

चारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन बिद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरु।

पए। नानक आए से प्रवान पए, जे सगले कुल तारेन महला तीजा। गुरु जिन्ना का अंधला, सिख भी अंधे कर्म करें। ओए भाणे चलन अपने नित झूठ।

शब्द रवै सब घट मेरे हों सबना अंदर जिस है खुआई तिस कौन कहे जिस है दिखाला वाटड़ी तिस है पुलावै कौन जिस है पुलाई पंध सिर तिस है दिखावै कौन महला पहला।

आपे सृष्टि सा जीअन आप गुप्त रखे सा गुर सेवा ते जाणिया सच प्रगटिए सा सब किश सचो सच है।

पौड़ी। मनमुख मोह गुबार है, दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है, नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है, मथ तत कढ़ोलै, अंतर प्रगा

गंढ जित दिन किश ना हो वई तित दिन बोलन गंध जी की सार ना जाननी मनमुख अज्ञानी।

ਭਾਠੀ ਪੀਓ ਮਹਾਰਸ ਭਾਰੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਇ ਕੀਏ ਜਲੇਤਾ, ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ।

हर हार हर उतारियो, जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम सुखदाता। सतसंगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

मन हर भगती संग सीवना, मात्या हर रस महराते, तिस बहुड़ना कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्ब निधाना।

है दूजै भरम भुलाई है। गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

सुख दुख हीते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई, बिन गुर राम नाम क्यों चाहिए। गुरमत ले हो तरहो पवद उत्तर, मुक्त पहे सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे।

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग

भगत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा। हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सिबाया।

यो भव जल जगत शब्द गुर तरियै अंतर की दुविधा अंतर जरियै पंच बाण ले जम कौ मारै गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाइय शब्द सुरत बिन

पुरख मन हाथी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सों। गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब

है, मर मर जम है, शब्द ना विचार है, अंतर माया मोह गुबारा, ज्यो सुपने सुध ना होई है। एक पंचावार शब्द है लागे, सतगुर आए मिले।

है। आन दिन गुण रव है दिन राती, आन दिन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है से मरण सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर

सदगुर बाजहु संगत ना होई, बिन शब्दे पार ना पाए कोई। सहजे गुण रहै दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उठ है ना मूले ना आव है ना जाही, निज घर वासा पाया। काया सुध है शब्द विच।

जो शरण परै तिसकी पत राखै जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै गुर कै शब्द भरम भौ भागै।

हे। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिरस गई हूं मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने जग में।

अविनाशी अवगत अगोचर सब सब किस तुझ ही है लगा। श्री रंग वैकुंठ के वासी मछ कछ कूर्म आगे।

गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस गाया।